सब मिलेंगी बची शरण जो ही। भोली सौ निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा।

संग करो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सगल मलेश करु रणकाता जी आदव शरणी परे तैनके दुष्ट दुखत हबे मरे पुरख जमन बापरे तिहारे तिनके तुम संगड़ सबटारे जो कल गुरु एक बार ते आए हैं ताके काल निकलन है रक्षा हुए ताहि सब काला दुष्टा रीष्ट रैंदल काला कृपा दृष्टा तन जाए निहर हो ताके ता तनक मोहर हो रे धा सिद्ध कर्म सब हुई दुष्ट शाह शब सक कोई

कहे जब ते तुमरे तब ते कुआ तरे नहीं अन्यो राम रहीम पुराण पुराण अनेक है बात एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वीर सब भीत कह हम एक न जान्यो

गुरु साहिब जी, दंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु, नानक ते कर हथ तुमरी शरण, तुम्हारी आसा तुम्ही सज्जन सुहेले, रखो रखनहार दयाला, नानक करके गोले तुमरी शरण, तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले, रखो रखनहार दयाला, नानक करके गोले।

तबला तबला मेन बॉ वाजा साइड बॉक्स लीड पीछे अरे अरे अच्छा तबला तबला तो नहीं है पीड़े बड़ा है। वाहिगुरु जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु कुछ नहीं हुंदा ना बढ़दा ना घटदा। वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी